गुरु अखां बंद करके बोलो सारे जुड़ के गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु सारे बोलो

परमेश्वर रव रहया सब नी जाए। परमेश्वर दिता बन्ना दुख रोग का डेरा पन्ना। जिस मनुख दे राह विच केड़ा राह, जेड़ा राह बुरियाई वाला राह सी, जेड़ा राह विकारा वाला राह सी, ओ राह परमात्मा ने रोक दिता। किस दा रोकिया? अपने प्यारियां दा रोकदा है, सारियां दा नहीं रोकदा। सारियां तुहानूं तां खुल दित्ती हुंदी है। एक होर मैं गल तुहाडे नाल सांझी करां, सारियां दे नाल बड़ी समझण वाली गल है। जदों मनुख किसी नूं ज्ञान दी गल समझाए ना, वह हरेक बंदे नूं समझाउण दा जतन नहीं करता। आम बंदियां च जिहड़ी गल चलदी है, जिहड़े अपने कोई नज़दीकी हुंदा है उसकी जे किते कोई कमजोरी नज़र आउंदी है, उसनूं समझाउण दा जतन करता है मनुख, वो अपने नूं समझाउण दा जतन करता। कहिंदा दुनिया तो मैं की लैणा देणा, दुनिया तो की लैणा, भावें जिन्ने मर्जी विकार कमावे। पर जिहड़ा नज़दीकी होवे उसनूं फिर मनुख कहिंदा, कहिण लगे मेरे मित्रा तू मेरी गल ध्यान लगा के सुन, तू मेरा मित्र है, भी तू मंदे राह ते तुरदा पिया, मंदे राह ते तुर के जिंदगी दे तू पाप कमा बैठेगा, पाप कमा बैठेगा, फल एक दिन मंदा होएगा, माड़ा होएगा, ये फल तेनू भोगना पएगा। प्यारिया तू कोशिश कर इस राह ते ना चल जिस राह ते तुरदा पिया तू, भाओ मंदे राह ते ना तू तुर, ये राह छड़ दे, ये मंदा है। जिहड़े परमात्मा दा गुणगान करदे ने, उस परमात्मा दी सिफता करदे ने, परमात्मा भी अपने प्यारियां दे वास्ते यही कुछ करदा है। जिहड़ा विकारां वाला राह है वह राह रोक दिंदा है परमात्मा। परमेश्वर दिता बन्ना, बन्ना दा भाव बन मार दिता, राही रोक दिता, हुण राह रोक दिता ते फिर उस मनुख दे वास्ते सीधा राह रह गया, सौखा राह रह गया, चंगा राह रह गया। वह खुला है राह उहदे वास्ते भी, तेरे वास्ते ये राह है, अगे राह बंद है, उहदे च मुश्किल बहुत हैगियां, तू नहीं जाना उधर नूं, होर चलते रहन, वह पापां दा अपने किते दा फल भोगणगे, पर तू नहीं जाना। एक होर मैं गल सांझी करां, जेकर कोई किसे नूं किसे दी गलती दस दे ना, उहदा कदे भी बुरा नहीं मनना चाहिदा, उहदा सगो धन्नवाद करना चाहिदा। सच्चाई है, उहदा धन्नवाद करिए भी किसे ने साडी गलती दसी असी उसनूं सुधार सकीए, ना कि उसका गुस्सा गिला करिए। पर बहुतात जदों देखण विच मिलदा है, यही मिलता, भाई तुसी किसे नूं दसो ना, प्यारिया तू ये गलती करता है, सच जानियो। बंदा कहिंदा भाई ये मेरे नाल लगता है, ये मेरे नाल लगता है, ये मेरी बेइज्जती करन ते तुला है, अपने आप नूं शाणा समझदा है। प्यारिया कदी विचार तां कर, तू तेनू समझाउंदा अगे बंदा जतन करदा, सारियां नू कोई नहीं समझांदा। जिहदे नाल कुछ लगाव होवे, जिथे कुछ अपनत होवे, उत्थे बंदा समझाउंदा जतन करदा दूजियां नू, भाई तू समझ कर अपनी गलती नू ठीक कर लै। ते गुरदेव पातशाह जी पंजवें पातशाह कहिंदे ने, कहिण लगे परमात्मा जी वी जिहड़े उस परमात्मा दे गुणगान करदे ने, कहण लगे उन्हां दा जिहड़ा राह विकारां वाला उस राह नूं ही रोक दिंदे ने। परमेश्वर दित्ता बन्ना दुख रोग का डेरा पन्ना। फिर ध्यान दिओ साध संगत जी, बड़े कमाल दी गल समझाउण दा जतन किया सतगुरां ने, भी जिहड़ा विकारां वाला राह है उस राह ते तुर के बड़े दुख बंदा भोगदा है। विकारां वाले राह ते तुर के
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵਿਕਾਰ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਪਾਪ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਕੂਨ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫੇਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੇ ਉਹ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ, ਤੂੰ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਵਾਈ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਰਸਾ ਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਰਸਾ ਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਕਾ ਡੇਰਾ ਭੰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੀ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਅੰਦਰ ਡੇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਡੇਰਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੁਝ ਬਣਿਆ? ਫਿਰ

सारे पढ़ो, गज के पढ़ो, मिल के पढ़िए। गुरु रामदास महाराज की सिफत जिमें भाई सत्ता जी बलवंडा जी ने की है ना जी, ये गुरु रामदास जिन्होंने तेन भावना करके सेव्या है ना, फिर गुरु रामदास महाराज जी तू उन्हों का बेड़ा पार कर दिता है। जिन्हें तू सेव्या भाव कर, जिन्होंने तेन भावना करके सेव्या है, जिन्हें तू सेव्या भाव कर सेत पार उतारिया। सारे मिलके पढ़िए गुरु रामदास महाराज की सिफत।

सर सत्रे जा रहे मेरे सतगुरु पातशाह पिछे दुश्मन दल सतगुरु पातशाह नु फड़न वास्ते मारन वास्ते जहली दे नारे ला रहा सतगुरु सचे पातशाह महाराज जी ने सरसा दे कंडे ते अपने पुत्र अजीत संघ बल्ले वेख्या महाराज की हुक्मा वैरी उत्ते आन चढ़िया सतगुरु कहन लगे वैरी दा रस्ता रोक लिया जाए ओना जेर तक छातियां डाके बाबा अजीत सिंह भाई जीवन सिंह भाई उदय सिंह ने दुश्मन दा मुकाबला कीता जिन्ना चर गुरु गोबिंद सिंह ने अपना नितनेम नहीं समाप्त कर लिया क्योंकि अमृत वेला हो चुका सी। संत सिंह ने आख्या महाराज जी पिछे वैरी चढ़िया आंदा अगे सरसा चढ़िया सरसा पार कर लिए ते नितनेम फेर कर लांगे। सतगुरु कहन लगे जे वेला वक्त विचारी है ता कित वेला भगत होए हो संत सिंगा मुड़के वेला नहीं लपना इथे समाधियां ला के बह जो महाराज खालसा शहीद हो जाएगा। सतगुरु कहन लगे फिर एदो अगे खालसे ने लेना भी की जाके किहो जिहा गुरु होएगा जेड़ा अपने पुत्र नू मदाने जंग नू तोरिया होएगा ते आप उस अकाल पुरख वाहेगुरु दी उस तत्त दे विच एक मिक होया होएगा। जिस अमृत वेले नू असी रजाई जमू दे के नींद विच खराटे मार के नगा दिने आ ना उस अमृत वेले नू संभालण वास्ते मेरे पातशाह ने अपने जाना तो प्यारे पुत ते सिंह ते शहीद करवा ले पर उन्हां ने अमृत वेले नहीं खुंजन दिता। इतिहास प्रेरणा स्रोत हुंदे वीरो अज ये प्रण करके जाओ कि साडी जिंदगी विच अमृत वेले ना गवाचे। सिख की जिंदगी जिहड़ी है ना वह अमृत वेले तो आरंभ हुंदी अमृत वेले तो गुरबाणी दे फरमान गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भलके उठ हर नाम ते आवै उदम करे भलके प्रभाती इशनान करे अमृत सरनावै उपदेश गुरु हर हर जप जापै सब किलविख पाप दोख लै जावै फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावै बहिंदिया उठदिया हर नाम त्यावै जो सास गिरास त्याए मेरा हर हर सो गुरसिख गुरु मन पावै जिसनु दयाल होए मेरा स्वामी तिस गुरसिख गुरु उपदेश सुनावै जन नानक धूड़ मंगै तिस गुरसिख की जो आप जपै अवर है नाम जपावे। ए सिख दा जीवन है तो सचे पातशाह महाराज जी दा परिवार इथे सरसा दे कंडे ते इतना खेरू खेरू हो गया जितना दिगे हुए दरख्त दे पत्तियां नू तूफान नखेड़ दिंदा। महाराज दा परिवार तिन्ना हिस्सों च वंडिया गया वड्डे साहिबजादे 40 सिंह सरसा नू पार कर गए छोटे साहिबजादे माता गुजरी जी दे नाल

जह साधो गोविंद भजन कीर्तन नानक नीत ना हो ना तो नह छुट है निकट ना जाई हो दूत। श्लोक महला पंजवा। मन मह चितवाओ चितवनी उद्यम करो उठ नीत हर कीर्तन का आहरो हर देहो नानक के मीत। सोहेला राग गौड़ी दीप की महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जय कर कीरत आखिया करते का होए बिचारो तित कर गाव हो सोहेला सिवर हो सिरजनहारो। तुम गाव हो मेरे निरभाव का सोहेला हाओ वारी।

सहस तव नैन नन नैन हह तोहे कौ सहस मूरत नना एक तोहे सहस पाद बिमल नान एक पाद गंध बिन सहस तव गंध इव चलत मोहे सब मह जोत जोत है सोए तिसदा चानन सब मह चानन होए गुर साखी जोत प्रगट होए जो तिस पावे सो आरती होए हर चरण कवल मकरंद लोभित मन

काम क्रोध नगर बहु भरिया मिल साधो खंडल खंडा हे पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा हे कर साधो अंजलि पुन वड्डा हे कर डंडौत पुन वड्डा हे रहाओ साकत हर रस साधना जानिया तिन अंतर हों मैं कंडा हे ज्यो ज्यो चल है चुभै दुख पाव है जमकाल सह है सिर डंडा हे हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन्म मरण पव खंडा हे अविनाशी पुरख पाया परमेसर बहु सोभ खंड

ले उबार किन मैं प्यान रूप निकसिया थामे उपाड़ हर नाकस नखी बेदारिया प्रहलाद लिया उबार संत जना के हर जियो कारज सवारे प्रहलाद जन के इक्की कुल उदारे आपे दैंत लाए दिते संत जना को आपे राखा सोई जो तेरी सदा सरनाई तिन मन दुख ना होई जुग जुग भगता की रख दाया दैत पुत्र प्रहलाद गुतरी तरपन किशु न जाने सबदे मेल मलाया राव अण दिन भगत करे दिन राती दुबदा सबदे खोई सदा निर्मल है जो सच राते सच वसिया मन सोई मूर्ख दुबदा पढ़े मूल ना पछाण बिरथा जन्म गवाया संत जना की निंदा करे दुष्ट दैंत चिड़ाया

नारायणा। नानक बोलै अमृत बाणी, एक बिना दूजा नहीं जानी। भैरव महला पंजवा, आगै दयो पाछै नारायण, मद भाग हर प्रेम रसायण। प्रभु हमारे शास्त्र सौन, सुख सहज आनंद ग्रह पौन। रहाओ रसना नाम करन सुन जीवे, प्रभ सिमर सिमर अमर थिर थीवे। जन्म जन्म के दुख निवारे, अनहद शब्द वजे दरबारे। कर कृपा प्रभ लिए मिलाए, नानक प्रभ शरणागत आए। भैरव महला पंजवा, कोट मनोरथ आव है हाथ, जम मार्ग कै संगी पाथ। गंगा जल गुरु गोबिंद नाम, जो सिमरै तिस की गत होवै। पीवत बहुड़ ना जोन परमाम। रहाओ पूजा जाप ताप स्नान, सिमरत नाम पए निहकाम। राज माल साधन दरबार, सिमरत नाम पूरन आचार। नानक दास एहो किया विचार, बिन हर नाम मिथ्या सब शार। भैरव महला पंजवा, लेप ना लागो तिलका मूल, दुष्ट ब्राह्मण मुआ होए कैसूल। हर जन राखे पार ब्रह्म आप, पापी मुआ गुर प्रताप। रहाओ अपना खसम जिन आप त्याया, एआना पापी ओह आप पचाया। प्रभ मात पिता अपने दास का रखवाला, निंदक का माथा ईहा ऊहा काला। जन नानक की परमेश्वर सुनी अरदास, मलेच्छ पापी पचया

बिन गुर भव जल फेरा होम जग जाप तप सब संजम तट तीरथ नहीं पाया मिटिया आप पय सरनाई गुरमुख नानक जगत तराया भैरव महला पंजवा बन मह पेख्यो तिरण मह पेख्यो ग्रह पेख्यो उदासाए दंड धार जट धारै पेख्यो वर्त नेम तीर्थाए संत संग पेख्यो मन माए ऊब पयाल सर्ब मह पूरन रस मंगल गुण गाए रहाओ जोग पेख सन्यासा पेख्यो जात जंगम कापड़ाए तपी तपी सुर मुन मह पेख्यो नट नाटक निरताए चहो मह पेख्यो खट मह पेख्यो दस अष्टी सिमरताए सब मिल एको एक वखान है तौ किस्ते कहो दुराए अगह अगह बेअंत स्वामी नह कीम कीम कीमाय जन नानक तिन कै बल बल जाइय जह घट प्रगटी आए पैरो महला पंजवा निकट बुझै सो बुरा क्यों करै बिख संचै नित डरता फिरै है निकटे अर भेद ना पाया बिन सतगुर सब मोही माया नेड़ै नेड़ै सब को कहै गुरमुख भेद विरला को लहै रहाओ निकट ना देखै पर ग्रह जाए दर्ब हिरै मिथ्या कर खाए पई ठगौरी हर संग ना जानिया बाज गुरु है परम पुलानिया निकट ना जानै बोलै कूड़ माया मोहे मूठा है मूड़ अंतर वस्त दसंतर जाए बाज गुरु है परम पुलाए जिस मस्तक कर्म लिख्या ललाट सतगुर सेवे खुले कपाट अंतर बाहर निकटे सोए जन नानक आवे ना जावे कोय भैरो महला पंजवा जिस तू रख है तिस कौन मारै सब तुझ ही अंतर सगल संसार कोट उपाव चितवत है प्राणी सो होवै जे करै चोज विडाणी रख हो कृपा तार तेरी शरण तेरा दरबार रहाओ जिन सेव्या निरपौ सुखदाता तिन पौ दूर किया एक पराता जो तू करहै सोई फुन होए मार ना राखै दूजा कोए क्या तू सोचै मानस बाण अंतर जामी पुरख सुजान एक टेक एको आधार सब किछ जानै सिरजनहार जिस ऊपर नदर करे करतार तिस जन के सब काज सवार तिस

कहा को बकता, बिन श्रवना कहा को सुनता, बिन नेत्रा कहा को पेख, नाम बिना नर कही ना लेख, बिन विद्या कहा कोई पंडित, बिन अमर कैसे राज मंडत, बिन बूझे कहा मन ठहराना, नाम बिना सब जग बौराना, बिन बैराग कहा बैरागी, बिन हो त्याग कहा को त्यागी, बिन बस पंच कहा मन चूरे, नाम बिना सद सद ही चूरे, बिन गुर दिखिया कैसे ज्ञान, बिन पेखे कहो कैसा ध्यान, बिन पै कथनी सर्ब विकार, कहो नानक दर का विचार। पैरो महला पंजवा। हौ मैं रोग मानुख कौ दीना, काम रोग मैं गलबस लीना, दृष्ट रोग पचमुए पतंगा, नाद रोग खप गए कुरंगा, जो जो दिसै सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। रहाओ जेहवा रोग मीन ग्रस्यानो, बासन रोग पवर बिनसानो, हेत रोग का सगल संसारा, त्रिविद रोग मह बदे बिकारा, रोगे मरता रोगे जन्मै, रोगे फिर जोनी परमै, रोग बंद रहत रत्ती ना पावै, बिन सतगुर रोग कतह ना जावै, पार ब्रह्म जिसकीनी दया, बाह पकड़ रोग हो कड लया, टूटे बंधन साध संग पाया, कहो नानक गुर रोग मिटाया। पैरो महला पंजवा। चीत आवै ता महा आनंद, चीत आवै ता सब दुख पंज, चीत आवै ता सरदा पूरी, चीत आवै ता कबह न चूरे, अंतर राम राय प्रगटे आए, गुर पूरै दियो रंग लाए। रहाओ चीत आवै ता सर्व को राजा, चीत आवै ता पूरे काजा, चीत आवै ता रंग गुलाल, चीत आवै ता सदा निहाल, चीत आवै ता सद धनवंता, चीत आवै ता सद निपरंता, चीत आवै ता सब रंग माणे, चीत आवै ता चूकी काणे, चीत आवै ता सहज कर पाया, चीत आवै ता सुन समाया, चीत आवै सद कीर्तन करता, मन मान्या नानक भगवंता। पैरो महला पंजवा। बाप हमारा सद चरंजीवी, भाई हमारे सद ही जीवी, मीत हमारे सदा अविनाशी, कुटुंब हमारा निज घर वासी, हम सुख पाया ता सब है सोहेले, गुरपुरै पिता संग मेले। रहाओ मंदर मेरे सब ते ऊचे, देश मेरे बेअंत अपूछे, राज हमारा सदी ने चल, माल हमारा अखूट अबेचल, शोभा मेरी सब जुग अंतर, बाज हमारी थान थनंतर, कीर्त हमरी कर कर होई, भगत हमारी सबनी लोए, पिता हमारे प्रगटे माज, पिता पूत रल कीनी साज, कहो नानक जाओ पिता पतीने, पिता पूत एक रंगलीने। पैरो महला पंजवा। निर्वैर पुरख सतगुर प्रवदाते, हम अपराधी तुम बखसाते, जिस पापी को मिले न टोई, शरण आवै ता निर्मल होए, सुख पाया सतगुरु मनाए, सब फल पाए गुरु त्याए। रहाओ पार ब्रह्म सतगुर आदेश, मन तन तेरा सब तेरा देश, चूका पड़दा ता नदरी आया, खसम तू है सबना के राया, तिस भाणा सूके काष्ट हरिया, तिस भाणा ता थल सिर सरिया, तिस भाणा ता सब फल पाए, चिंत गई लग सतगुर पाए।

नाम लैत दरगह सुख पावै, नाम लैत प्रभ कह साबास, नाम हमारी साची रास। गुर उपदेश कहो एहो सार, हर कीरत मन नाम आधार। नानक उदरे नाम पुनः चार, अवर कर्म लो

सो हीरा निर्मल नाम, जास जपत पूरन सब काम रहाओ, जाकी दृष्ट दुख डेरा टहै, अमृत नाम शीतल मन गहै, अनक भगत जाके चरण पुजारी, सगल मनोरथ पूरन हारी, खिन मह ऊने सुपर भरिया, खिन मह सूके कीने हरिया, खिन मह निथावे कौदी नो थान, खिन मह निमाणे कौदी नो मान, सब मह एक रहया पर पूरा, सो जापै।

तपत बुझी पूर्ण सब आसा, मिटे अंधेर पए परगासा। अनहद शब्द अचरज बिस्माद, गुर पूरा पूरा प्रसाद, जाको प्रगट पए गोपाल।

मन तन सीतल हर हर जपना। कहो नानक जो जन प्रभ पाए ताकि रेन बिरला को पाए। पैरो महला पंजवा। चितवत पाप न आलक आवै बिस्वा भजत किछ न शरमावै। सारो दिन समझूरी करै हर नाम की वेला बजर सिर परै। माया लग भूलो संसार आप भुलाया भुलावन हारै। राच रहिया बिरथा ब्योहार रहाओ पेखत माया रंग बिहाय। गड़बड़ करै कौडी रंग लाए अंध ब्योहार बंद मन तावै। करण हार न जी मह आवै करत करत इवही दुख पाया। पूरन होत न कारज माया काम क्रोध लोभ मन लीना। तड़फ मुआ ज्यों जल बिन मीना। जिसके राखे होए हर आप हर हर नाम सदा जप जाप। साध संग हर के गुण गाया नानक सतगुर पूरा पाया। पैरो महला पंजवा। अपनी दया करे सो पाए हर का नाम मन वसाए। साच शब्द हिरदे मेहमान साच शब्द हिरदे मन माहे। जन्म जन्म के किल विख जाहे राम नाम जी को आधार। गुर प्रसाद जपहो नित पाई तार लए सागर संसार रहाओ। जिनको लिखिया हर एहो निदान से जान दरगह पावह मान। सुख सहज आनंद गुण गाओ आगे मिलै निथावे थाओ। जुगह जुगंतर एहो तत्सार हर सिमरन साचा विचार। जिस लड़ लाए लए सो लागे जन्म जन्म का सोया जागे। तेरे भगत भगतन का आप अपनी महिमा आपे जाप। जी जंत सब तेरा हाथ नानक के प्रभ सद ही साथ। पैरो महला पंजवा। नाम हमारा अंतर जामी नाम हमारा आवै कामी। रोम रोम रविया हर नाम सतगुर पूरा की नोदान। नाम रतन मेरा पंडार अगम अमोला अपर अपार रहाओ। नाम हमारा ने चलतनी नाम की महिमा सब मह गनी। नाम की महिमा सब मह बनी। नाम

प्राण सुख दाता, तू मेरा ठाकुर हो दास तेरा, तुझ बिन अवर नहीं को मेरा, कर कृपा करो प्रभदात, तुमरी उस्तत करो दिन रात रहाओ, हम तेरे जंत तू बजावन हारा, हम तेरे पिखारी दान देहे दातारा, तव प्रसाद रंग रसमाने, घट घट अंतर तुम्हें समाने, तुमरी कृपा ते जपिया नाओ, साध संग तुमरे गुण गाओ, तुमरी दया ते होए दर्द विनाश, तुमरी माया ते कमल विगास, हो बलिहार जाओ गुरुदेव, सफल दर्शन जाकी निर्मल सेव, दया करहो ठाकुर प्रभ मेरे, गुण गावे नानक नित तेरे।

कोट अगा मिट है हर नाम। तिस सरनाई सदा सुख होए, कर कृपा जाको मिले सोए रहाओ। जाके करतब लखे ना जाहे, जाका परवासा सब घट माहे। प्रगट भया साधु कै संग, भगत आराध है अन दिन रंग। दे दे तोट नहीं भंडार, खिन मह थाप ओथा पनहार। जाका हुक्म न मिटे कोए, सिर पात साहा साचा सोए। जिसकी ओट तिसै की आसा, दुख सुख हमरा तिस ही पासा। राख लीनो सब जन का पड़दा, नानक तिसकी उस्तत करदा। पैरो महला पंजवा, रोवन हारी रोज बनाया। बलन बर्तन कौ संबंध चित आया, बूझ बैराग करे जे कोए। जन्म मरण फिर सोग न होए, बिख्या का सब धंद पसार। विरले कीनो नाम आधार रहाओ, त्रिविद माया रही ब्याप। जो लपटानो तिस दुख संताप, सुख नाही बिन नाम ते आए। नाम निदान बड़भागी पाए, स्वांगी स्यो जो मन री जावै। स्वाग उतारिया फिर पछतावै, मेघ की छाया जैसे बरतनहार। तैसो परपंच मोह बेकार, एक वस्त जे पावै कोए। पूर्ण

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे

जन्म मरण दुख जाहे, वाहे गुरु साहिब जियो, तनासरी महला पहला, शांत एक ओंकार सत।

संगम सत सते अराध एकंकार सच्चा नित देह चढ़े सवाया गत संगमीता संत संगत कर नदर मेल मिलाया।

संगतो साजै पेंडे महान दुबारा हर का नाम संग उजियारा जहां पंथ तेरा को नाम सियानू हर का नाम ते नाल पछानू जय मां भ्यान तप्त बहु काम तै हर के नाम की तुम्हें उपर शाम जहां त्रिखा मत करके तै नानक हर हर अमृत बरखे भक्त जना की बर्तन नाम संत जना के मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर कै नाम तरे जन कोट हर जस करत संत दिन रात हर हर औखद साध कुमात हर जन कह हर नाम निधान पार ब्रह्म जन की नो दान मंतन रंग रते रंग एक कह नान जन कह वृत विवेक हर का नाम जन को मुक्त जुगत हर कह नाम जन को तृप्त भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत कब परे न भंग हर का नाम जन की वड्याई हर कह नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत किज नाय विजोग जन रता हर नाम की सेवा नानक पूजे हर हर देवा हर हर जन के मालिक जीना हर तन जन को आप दीना

तो मूढ़ा को काम करे, जिस ठाकर से ना ही चारा ताको की जय सात नमस्कारा, जाके मन लगा प्रमीठा सर सुख ताहू मन बूठा, जे जने अपना हुक्म मनाया सर थोक नानक तिन पाया, अगनंद साहु अपनी दे रास खात पीत बरते अन्द उलास, अपनी अमान कछ बौर साहुले अज्ञानी मन रोज करे, अपनी प्रतीत आवी खोवे बौर उसका विश्वास न होवे, जिसकी बस्त से आगे राखे प्रभु की आज्ञा माने माथे, उसते चौगन करे निहाल, नानक साहिब सदा दयाल, अनक भांत माया के हेत सर पर होत जान, रेत बिर की छाया सुन रंग लावे, ओ मिनसे ओ मन पजदावे।

जे प्रसाद तू चार बिहारी तिस प्रको साज साज तारी जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा अनूप जे प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पात्र है गुर प्रसाद नानन जस कहे जे प्रसाद सुने करन नाद जे प्रसाद पेखे विस्माद जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सजे बसना जे प्रसाद हस कर चले जे प्रसाद संपूर्ण फल है जे प्रसाद परम गत पावे जे प्रसाद सुसै समावे ऐसा प्रत्याग और कत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो जे प्रसाद तू प्रकट संसार तिस प्रको मूल मनो विसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूर्त ताको जाप जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तुझे जान मन सदा हजूरे जे प्रसाद पावे साज तेरे मन मेरे तू तास्यो राच जे प्रसाद सब की गत होए नान जाप जपे जब सोए आप जपाए जपे सो नाओ आप गाव आए सो हर गुण गाओ प्रभु कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास प्राव सो प्रसन्न से मन सोए प्रभु दया ते मत उत्तम होए सर्वधान प्रभु तेरी मैं आपो कछु न किन्हू लया जित जित लावो तित लगे हर नाथ नान किनके कछु न हाथ शलोक आगम गाद पार सोए जो जो कह सुमुक्ता वे सुनमीता नानक बिनवंता साध जना की आचर्य कथाष्पदी साध के संग मुख उज्जल होत साध संग मल सगली खोत साध के संग मिटे अभिमान साध के संग प्रटे सो ज्ञान साध के संग मुझे प्रभ नेरा साध संग सब होत नेरा साध के संग पाए नाम रतन साध के संग एक ऊपर जतन साध की महिमा बढ़ने कौन पुरानी नानक साध की शोभा ब्रह्मा समानी साध के संग गोचर मिले साध के संग सदा प्रफुले साध के संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग हुए सबकी रेन साध के संग मनोहर बैन साध के संग न कथू तावे साध संग अस्तित मन पावे साध के संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभु सो प्रसन्न साध संग दुश्मन सब मीत साधु के संग मा पुनीत साध संग के स्यों नहीं बैर साध के संग न बिगा पैर साध के संग नाई को मंदा साध संग जाने परमानंदा साध संग नाई हो ताप साध का संग तजे सब आप आपे जाने साध बढ़ाई नान साध प्रभु बाने आई साध के संग न कबू तावे साध के संग सदा सुख पावे साध संग बस्त गुचर लय साधु के संग अजर सहे

ब्रह्म ज्ञानी कह कह रंग ब्रह्म ज्ञानी कह बसे प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सजागत ब्रह्म ज्ञानी अब त्यागत

ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रव्या, ब्रह्म ज्ञानी का बट प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दस बट भागी पाई है। ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए, ब्रह्म ज्ञानी को खोज जाए, महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी कह सगल मन माए, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश, ब्रह्म ज्ञानी का कथे न जाए आखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर, ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सब जीवे नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुग जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सभी उपराध, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार,

जो मंदिर को धामे धमण त्यों गुरका जब मने दमण ज्यो पाखाण नाव चढ़दरे प्राणी गुर चरण लगत निस्तरे जीवंत कार दीपक प्रकाश गुर दर्शन देख मन होए बिगास जो माओ ध्यान में मार्ग पावे त्यों साधु संग में जोत प्रटावे तिन संदर की बाचो तू नान किया लोचा पूर मन मूर्खाए मिल लाइए पुर लिखेगा लिखिया पाइए दुख सुख प्रभ देव नहार अब त्याग तू तिसे चितार जो कुछ करे सोई सुखमान भूला काहे फिरे जान कौन बजताई तेरे संग लपट रो रस लोभी पतंग राम नाम जब हृदय माए नानक पद से कर जाए जिस

सुन रहे सुमाय जो आओ सो जाने प्रभु अपने का हुक्म जाने तिसकी महिमा कौन मुखानो तिसका गुण कह एक न जानो आठ पैर प्रभु से जुरे कौ नान से जन पूरे मन मेरे तिनकी ओटले मन तने अपना तिन जन दे जन जाने अपना प्रभु पछाता सो जन सर सुख का दाता तिसके सन सर सुख पावे तिसके दस सब पाप मिटावे अवर सियान सगली शाट तिस जन की तू सेवा लाग आवन जान होवी तेरा नान तिस जन के पूजो सत पैरा श्लोक सत पुरख जिन जान्या सात गुर तिसका नाओ तिसके संग से उदरे नानकार गुण गाओ अष्टपदी सतगुर सिक्की करे प्रतपाल सेवको गुर सदा दयाल सिक्की गुर दुरमत मल हिरे गुर बचनी हर नाम उचरे सतगुर सिक्के बंधन काटे गुरका सिख विकार दे हटे सतगुर सिखो नाम धन दे गुरका सिख वटभागी है सतगुर सिखा हलत पल सुवारे नान सतगुर सिखो जी नाल समारे गुरके ग्रह से उपज रहे गुर की आग्ञा मन में सहे आप उसको करकश ना जनावे हर नाम हृदय सत्यावे मन बेचे सतगुर के पास ते सेवक के कार्य रा सेवा करत हुए न कामी तिसको होत प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिसाव करे नानक सो सेवक गुर की मत ले विश्वै गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाने सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ अनक बार गुर को बल जाओ सर्व निधान जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म जन जन में पार ब्रह्म एक है आपने एक परम सहण बलया न जाइये नानक ऐसा गुरु भागी पाइये सबल दर्शन पेख पुनीत प्रसद चन गत निर्मल रीत पेट संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दर गह गवे सुनकर भजन करन गाने मन संतोख आदमपतिया ने पूरा गुरे आख्यो जाका मंत्र अमृत देश पेखे हुए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस पावे तिस लय मिलाए जे एक उस्त अनेक सत पुरख पूर्ण विवेक आओ बोल न बोच प्राणी गम गोचर पर निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई धागी कीमत किरण पाई अनक भगत बंधन नित करे चनक मन हृदय सिमरे सत बलिहारी सतगुरु अपने

साठ पैर हर का नाम ले। साच उपदेश सेवको दे मोह माया के संग न ले। मन में राखे हर हर एक अंधकार दीप प्रकाशे। नानक परम मोह दुख दाते नासे तप्त माए। टाण बरताए अंत पिया दुख नाठे पाए। जन मन के मिटे दिसे साधु के पूर्ण उपदेश भाव चुका। निर्भाव हुए वसे सगल व्याध मंते गह नसे। जिसका साधन कृपा धारी साध संग जप नाम रारी। तित पा चुके परम गमन सुन नानक हर हर जस सरवण। निर्गुण आप सरगुण भी हो करा धार जिन सगली मोही। आपने चरित प्रगया बनाए अपनी कीमत आपे पाए। हर बिंदु जानाई कोए सर्व निरंतर एको सोए। ओतपोत रभया रूप रंग भय प्रकाश साध के संग। राच रचना अपनी कलधारी अनक बार नानक बलियारी। शलोक साधन चले बिन भजन विख्या सगली शार। हर नाम कमावना नानक धन सार अष्टपति। संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम धार। और पाव समीत विसारो चरण कमल हृदय में उधारो। कण कान सुप्राप समर्थ दृढ़ कर गहो हो। नाम रवा दे तन संचो वो भगवंत। संत जना का निर्मल मंत एक आस राखो मन माए। सर्व रोग नान मिट जाए। जिस धन को चार कुंठन दावे सो तन हर सेवा ते पावे। जिस सुखो निज बाचे मीत सो सुख साधु संग प्रीत। जिस शोभा को करे भली करनी सा शोभा पजर की सन्नी। अन को भावी रोग न जाए रोग मिटे हर औख लाए। सर्व निधान में हर नाम निधान जप नानक दरगे प्रवान। मन प्रबोधो हर के नाए दै दिस धावत आवे टाए। ता को बिघन न लागे कोहे जा के हृदय से हर सोए। कलता ती ठांडा हर ना हो सिमर सिमर सदा सुख भाओ। भाविन से पूर्ण होए आस भक्त पाए आत्म प्रकाश। तित कर जाए वसे अमनासी कहो नानक काटी जम्पासी।

मन पूरे हो प्रभ्याप। आनक विस्तार एक ते पै एक रात प्रास्त गए मंत्र अंतर एक प्रवराता गुरु प्रसाद नानक एक जाता श्लोक फिरत फिरत प्रया प्रया तो शरणाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए अस्परी जाचक जन जाचे प्रदान कर कृपा देवो हर नाम साजना की मांगो धूर पार ब्रह्म सदा पूर सास दा प्रके गुन गावो सास सास प्रभु में त्यावो।

आप जय बसरे बसार संत प्रताप दोहु पाका आपे तनी उनकी सुबा उनु बनी आपे कौतक करे नंचो जापे रस भोगन जो जिस पावे तिस आपन न लावे जिस पावे तिस के खिलावे बेसमार था अगंत तुले ज्यो मिलावो त्यो नानक दास बोले श्लोक जी जंत के ठाकरा आपे वर्तन हार नानक एको पसरिया दूजा के दिष्टार अष्टपदी आप कथे आप सुनने हार आपे का विस्तार जातिस पावे तन सिष्ट पाए अपने भाणे ले समाए तुम ते पहने किश होए आपन सूत सब जगत परोए जाको प्रभ जीव आप बजाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत्का बेता नानक सरल शिष्ट का जेता जी यंत्र सब ताके हार दीन दयाल नाथ को नाथ जिस राखे तिस को न मारे सो मुआ जिस मनो सारे तिस्ता जबर का को जाए सब सिरे एक निरंजन राय

मैं विसर ना जाई। तीर्थ नावा जित भावा बिन पाने के नाई करी, जेते सिरठ्यो पाई वेखा बिन करमा के मिला लई। मत विच रतन जवाहर माणक जेक गुर की सिख सुनी, गुरा एक देह बुझाई सब ना जिया का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। जे जुग चारे आर जा होर द सुनी होए, नवा खंडा विच जानिए नाल चल सब कोए। चंगा नाव रखाई कै जस कर जागले, जे तस नदर ना आवे ता बात ना पुछ के।

मन कोय, मन स्वरत होवे मन बद्ध, मन सकल पवन के स्वद्ध, मन मोह चोटा न खाए, मन जम का साथ ना जाए।

भावे है न भिख। ऐसा नाम निरंजन होए देखो मन जाने मन कोए। पंच परवान पंच प्रधान पंचे पाव है अंदर गय मान पंच सो है अंदर राजान पंचा का गुरु एक ध्यान।

जनसूत जेको बुझा हुआ सचियार तब लायो पर किता पार धरती होर परै होर तिसे पार तलै कवण जोर जी जा तरंगा के नाम सबना लिखिया बड़ी कलाम एहो लेखा लिख जाने कोई लिखा लिखिया किता होए

असंख जाप असंख पाओ असंख पूजा असंख तपताओ असंख रनमुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दाचार्य असंख सूरमो पाख सार असंख मौन लेवलाय चार्य

हर असंख मूर कंद कोर असंग चोर हराम खोर असंग कमर कर जाहे जोर असंग गलबड़ हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंग कुड़ियार कुड़े फिराहे असंख मले मल

सहस 18 कहन कते बास लोक तात लेखा हुए त लिखिए लिखे हुए विनाश नानक वड्डा आखिए आपे जाना आप साला ही साला ए ते सुरत ना पाइया नदियां ते वा पवे समंद ना जानिए समंद सा सुल्तान गिरह से ते माल तन कीड़ी तल ना हो नी जेत सुमन हो ना विसराए अंत

जेको खाए के आखण पाए ओहो जाना जितिया मोह खाए आपे जाने आपे दे आखें से पे के जिसनो बख्शे सिफत साला नानक पातशाह ही पातशाह अमल गुण अमल व्यापार अमल व्यापारी अमल भंडार अमल आप है अमल ला जाए अमल पाए अमल ला समाए अमल तरम अमल दीवान अमल तल अमल परवान अमल

बोलवे गाड़ ता लिखिए सिर गावा रंगावार सो दर के हो करके हित बै सर्व सुमाले वाजे नादने का संखा के ते वावन हारे के ते राग परिस्यो कहियन के ते गावन हारे

लिख ले धर्म विचारे गावै सर ब्रह्मा देवे सोहन सदा सुवारे गावै इंद इंदासन बैठे देवत्यां दर नाले गावै सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे।

सुरगामा छुपाया ले। गावा रत्न उपाय तेरे अर्थर तीर्थ नाले, गावा जोत महाबल सूरा गावा खानी चारे, गावा खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे, सही तुदनों गावा जोत पावन रते तेरे भगत रसाले।

करमे करमे होय विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोन पंच परवान नदरी करम पवे निशान कत बकाई उथे पाए नानंगे आ जाप जाए तरम खंड काय हो तरम ज्ञान खंड काय आख हो करम किते पौन पाणी वै संतर केते कान महेश केते ब्रह्म घाट करिए रूप रंग के वेश केत्या करम भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाद केते केते देवी वेश केते देव दान मुन केते केते रत्न समुंद केतिया खानी केतिया बाणी केते पाद नरेंद्र केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत नायंत

चतर चक्र कर्ता चतर चक्र हर्ता चतर चक्र दान्य चतर चक्र जान्य चतर चक्र भर्ती चतर चक्र भर्ती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र।

अकीर्ता कीर्त हैं धरणी तिरत हैं हम ते सुर हैं परमेश्वर हैं। कीर्ता कीर्त हैं मृत मृत हैं निर्णायक हैं खलकायक हैं।

संजयलेखम भुजंग प्रजा चंद नमस्तल प्रणाम समस्तल प्रणा से अगंजल नाम समस्तल निवास निरकाम विभूते समस्तल स्वरूप कुकर्म प्रणासी सुधर्म विभूते सदा सचदानंद शतरम प्रणासी क्रीमल कुनिंदा समस्तल निवासी जाय विभूते गजाय गनी में हरियंग करियंग क्रीमरी में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वम स्वंग सर्वदा सर्व जुगते दुकाल प्रणासी दयाल स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगम विभूते

निंदन सचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव ते जल में थल में पल ही पल में सब धाव थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जय तुन पापन के वो पुंज खपेंगे।

आज भरेंगे ब्रह्मे सर्व संसजी पद अंत भजे जम पास परेंगे जे नर श्री पद के प्रस भक्ते नर फेर न दे तरेंगे कहां प्यो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो भक्त ध्यान लगायो नाथ फिरियो लिए सात समुद्रन लोग गयो पर लोग आयो बास कियो विख्यान सो बैठ के ऐसे ही है सुबह बतायो साच को सुन लियो सुबह जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो

पूजते हैं पस को मृतान को पूजन तायो कूर क्रिया और जो सभी जग श्री भगवान को भेद न पायो कूर क्रिया और जो सभी जग श्री भगवान को भेद ना पायो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री वाहेगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवे आज बेनती चौपाई हमरी करो हाथ रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चन्न मारे हमारा अपना जान करो बदबारा हमरे दुस्वे तुम गावो आप दे मोए बचावो सुखी वसे मोर परवारा से उसिक सबे करतारा मोर छानिज कर दे करिए सब बैरन को आसंगरिये पूर्ण होए हमारी आसा तुर पंकी रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अपना त्याऊ जो भर चाहो सो तुम ते पाओ से उसे हमारे तारिये चुन चुन सत्र हमारे मारिये आप दे मुझे वरिये मन काल का त्रास मरिये हूँ जो सदा हमारे पच्छा श्री तुझो करे और अच्छा राख लियो मोए राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे।

काल काकिया तमासा जमन काल जोगी सब कियो वेदराज ब्रह्मा ज्योतियो जमन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताय हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैत जशन बजायो आदि अंते कै अवतारा सोए गुरु समझो हमारा नमस्कार तिसी को मारी सकल प्रजा जने आप सुवारी सिवकन को सब गुण सुधियो शतरण को पल मोहद कियो गट गट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछांत जीटी ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दिशकर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक की पीर पछाने घट घट के पट पट की जाने जबद कर करा कर तारा प्रजा धर तब दे अपारा जबा कर कर तो कबू तुम मैं मिल दे तर सबू

तीर्थ नावन जाओ तीर्थ नाम है। तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। तीर्थ नावन जाओ तीर्थ नाम है। तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है।

0: सत्य त्रि सिफ़ सत्य सला सत्य त्रिकुद सत्य पातशाह नान सत्य हैं सच जो मर्द में सो कथन कथ महला पहला
1: डिवड़े आई जा वड्डा ना हो डिवड़े जा सच ने आओ डिवड़े जा नीचे था डिवड़े जाने हला वडिवड़े पूजे सब पाओ।

सम्मान योग जुगो जुग अटल चवर शतर तख्त दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन गोद विच साजी निवाजी गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ आप सारे बड़भागी हो तनता दे योग हो जो अमृत वेले सतगुरां दी पावन गोद विच बैठ के सतगुरां दी पावन बाणी अमृतमई बाणी सरवण करके आत्मक आनंद माण रहे हो अपना यह मनुखा जन्म सफला कर रहे हो। आओ अज जो अमृत वेले सतगुरां ने पावन हुक्मनामा बख्शिया उस दी विचार आपां कर सकीए। विचार आरंभ करन तों पहला सतगुरां दी बख्शी हुई फतेह प्रवान करो जी। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। अज जो सतगुरां ने पावन फरमान बख्शिया वो पावन शब्द पहले पातशाह धन धन गुरु नानक देव साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन रचना तो उच्चारण किया होया। तनासरी राग के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब विच सतगुरां दे अंग 687 688 उत्ते सुशोभित है। सतगुरां ने इस पावन शब्द विच तीन गल्लां कीतियां ने। एक सब तो पहला गल कीती भी बहुत सारी लुकाई है। जिहड़े लोकी तीर्थां ते जाके इशनान करके कहिंदे ने भाई साढ़े तो सारी अंदर लगी पापा की मैल सारी धुप गई असी फिर नए निरोए हो गए साढ़े सारे पाप धुल गए। दूजी गल परमात्मा की संगत गुरु की संगत की गल की। गुरु की संगत करके परमात्मा का नाम जप के ही अंदर की मैल हट सकती है। अखीली तुक विच गुरदेव कहते ने नानक साच कह बेनंती मन मांजै सच सुई। पहली तुक विच तीर्थां ते जाके इशनान कराउण की गल की। अखीली तुक विच यह गल समझाई कि प्यारियो तीर्थां ते जाके भावें जिन्हें मर्जी इशनान कर लो पर मनुखा जदों तक तू परमात्मा का नाम नहीं जपदा उदे तक तू अपने मैल नहीं धो सकता उदों तक तेरा यह मन यह पवित्र नहीं हो सकता। इसनों नाम जप के मांजना पएगा। मांजना पाओ सारे जानते हो तुसी मांजना कर भई आपां भांडे मांजदे हां। जिस तरह आपां भांडे मांज के ही साफ हुण सुभावक गल है साध संगत जी भांडे नूं लगी हो वेत दी मैल फिर थोड़ा जा समझण दा जतन करियो। एक भांडे नूं चंगी तरह मैल लगी होवे

परमात्मा दे नाल सांझ बनती है। गुरु का शब्द परमात्मा दे मिलाप का राह दसदा है भी इस तरीके नाल तू परमात्मा नू मिल सकदा है।

है। गुर ज्ञान साचा थान तीरथ दस पुरब सदा दशहरा। हौ नाम हर का सदा जाचौ देहो प्राब तरनी तरा। संसार रोगी नाम दारू मैल लागे सच बिना। गुर वाक निर्मल सदा चानन नित साच तीरथ मज्जना। साच न लागे मैल क्या मल धोई है। गुण है हार परोए किस का रोई है।

प्रथम राग भैरो वह करही पंच रागनी संग उचरही प्रथम भैर भी बिलावली पुनिया की गावह बंगली पुण्य असले की पहिवारी ए भैरो की पंचो नारी पंचम हरख दि

प्रबल चंद को सकियो वारा खो खटियो पौरा नद गाय अष्टमाल को सक संग लाई।

जी को मन जाने मन कोय मना सुर तुवे मन बुद्ध मना सगल भवन की सोदा मना मोह चोटा न खाए मना जाम के साथ न जाए असा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोय मना मार्ग ठाक न पाए मना पात स्यों प्रगट जाए मना मग न चले पंथ मना धर्म सिति संबंध ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोय मन पावे मुख द्वार मन परवारे साधार मन तरे तारे गुरसिख मन नानक भवे ना भिख ऐसा नाम निरंजन हुए जे को मन जाने मन कोय पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावे दरगे मान पंच सुह दर राजान पंचा का गुरेग ध्यान

तीर्थ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए बिन गुण कीते भगत ना होए स्वस्थ आत्म बाणी बरमाओ सत सुहान सदा मन चाओ कवन सुवेला वक्त कवन आओ।

जाए केहु अंत न जाने कोई बहुता कहिए बहुता होए वड्डा साहिब ऊंचा थाऊ ऊंचे उपर ऊंचा नाऊ एवड़ी ऊंचा होवे कोए ते सूचे को जाने सोए।

जाने जेतिया मुख आए। आपे जाने आपे दे आखे से बेके के जिसनु बख्शे सिपत सलाह। नानक पातशाही पातशाह अमुल गुण अमुल व्यापार अमुल व्यापारी अमुल भंडार अमुल आवे अमुल ल जाहे अमुल पाए अमुला सुमाहे।

सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेख कीता अपना जिव तिस दी वडियाई।

आवो संत प्यारे हो अकात की करह कहानी, करह कहानी अकात केरी कैत द्वारे पाई है। तन मन धन सब सौंप गुर को,

कथियो अकथ कहानी ए मन चंचला चतराई किने ना पाया चतराई ना पाया किने तू सुन मन मेरिया ए माया मोहनी जिन एत भरम पुलाया माया ता मोहनी तिने कीती जिन ठगोली पाईया।

जिन गौर मुख हर हर त्याया करमी सहज न उपज विण सहज सहसा न जाए न जाए सह सक ते संजम रहे कर्म कमाए सहसे जीव मलीन है कित संजम धोता जाए मन तो वो शब्द लागो हर स्यो रहो चित लाए कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजै इहो सहसा एव जाए जियो मैले बाहरो निर्मल बाहरो निर्मल जियो ता मैले तिन जन्म जुए हारिया ए तिसना वड्डा रोग लगा मरण मनो विसारिया वेदा मैं नाम उत्तम सो सुने नाही फिरे जो बेतालिया कह नानक जन सच तजया कूड़े लागे तिन जन्म जुए हारिया जियो निर्मल बाहरों निर्मल बाहरों ता निर्मल जियो निर्मल सतगुर ते करनी कमाणी कूड़ की सोए पहुंचे नाही मनसा सच समाणी।

गुरु सेती सन्मुख होवै, होवे तां सन्मुख सिख कोई, जियो रहे गुर नाले गुर के चरण, हिरदय त्याए अंतर आत्मा समाले, आप छड सदा रहे परने, गुरबिन अवर न जाने कोई, कहे नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख होए। जे को गुर ते विमुख होवै, बिन सतगुर मुक्त न पावै, पावे मुक्त न होर थे कोई, पुछो बिवेकियां जाए, अनेक जूनी भरम आवै, बिन सतगुर मुक्त न पाए, फिर मुक्त पाए लाग चरणी, सतगुरु शब्द सुनाए, कहे नानक विचार देखो, बिन सतगुर मुक्त न पाए, आवो सिख सतगुरु के प्यार हो, गावो सच्ची बाणी, बाणी तां गावो गुरु केरी, बाणियां सिर बाणी, जिन को नदर कर्म होवै, हिरदे तिना समाणी, पीवो अमृत सदा रहो हर रंग, जप्यो सारंग पाणी, कहे नानक सदा गावो ए सच्ची बाणी, सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी तां कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी, कह दे कच्चे सुन दे कच्चे, कच्ची आख वखाणी, हर हर नित करे रसना, कहया कछु न जानी, चित जिन का हिर लिया माया, बोलन पैरवाणी, कहे नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी, गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ, शब्द रतन जित मन लागा एहो हुआ समाओ, शब्द सेती मन मिलिया सच्चे लाया पाओ, आपे हीरा रतन आपे जिसनों दे बुझाए, कहे नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ, सब सकते आप पाए कै करता आपे हुक्म वरताए, हुक्म वरताए आप वेखे गुरम किसे बुझाए, तोड़े बंधन होवे मुक्त शब्द मन वसाए, गुरमुख

तू अनरस राच रही, तेरी प्यास न जाए, प्यास न जाए होर तिकित जिचर, हर रस पल्ले न पाए, हर रस पाए पल्ले पिए, हर रस बो न तृष्णा लागे आए, ओह हर रस करमी पाइए, सतगुर मिले जस आए, कहे नानक होर अनरस सब विसरे, जा हर वसै मन आए, ए श्री रा मेरे आ, हर तुम मैं जोत रखी, ता तू जग मह आया, हर जोत रखी तुद विच, ता तू जग मह आया, हर आपे माता आपे पिता, जिन जियो अपाए जागत दिखाया, गुर प्रसादी बुझिया ता चलत होवा, चलत नदरी आया, कहे नानक श्रेष्ठ का मूल रचिया, जोत राखी ता तू जग मह आया, मन चाओ पिया प्रभ आगम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदर बनिया, हर गाओ मंगल नित सखिए, सोग दुख ना व्यापए, गुर चरण लागे दिन सुभागे, अपना पिर जापए, अनहत बाणी गुर शब्द जानी, हर नाम

क्या तद कर्म कमाया के कर्म कमाया तद शरीरा जा तू जग मह आया जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन ना वसाया गुर प्रसादी हर मन वसया पूर्व लिखिया पाया कह नानक इहो शरीर परवान होवा जिन सतगुर स्यों च

रंग पे राव के पुपा हांड जेर से तिसकी नीव तुष्कान मोरा दीनी कम फूल राजा बैठा कम सुन पे शंकर काटा सगरी सिर दिखाए चंबव आज वासरू स्वंभव आप रक्षा मेरी तुम करो सिख वार सिख संग रो दुष्ट जिते उठवा तुझ पाता सकल मनेश करोड़ गाता जे तुद सड़नी परे तिनके दुष्ट दुख तो मरे पुरुष जीवन पर परे तिहारे तिनके तुम संकट सब डारे जो काल को एक बार

तेले उचाए कृपा करी हम पर जब माता ग्रंथ करा पूर्ण सवराता कलवे सकल देखो अर्था तुझ दो किन कोचा करता श्री अल तुझा पै दे आला पूर्ण करा ग्रंथ काला मन वंशित फल पावे सोई दुख न तिसे व्याप्त कोई अड़ल सुने गुम जो जाए सुरसना पावे सुने मूर्च दिलाय चतरता आवे दुख दर्द पौ निकट ना तिन नर के रहे हो जो जाकी एक बार चौपी उके चौपी सम्मन सतरा सहज पुणित जय हर सहज पंतीन की जय भाद्र सुधी अष्टमी रिवारा तीर्थ तद्रव गंध सुधारा सोये पाएंगे जब ते तुम

0: सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी पावन पवित्र गोद अंदर सज बैठे पवित्र आत्मा गुरु खालसा साह संगत जीओ, आओ सब तो पहला कलगी वाले पातशाह महाराज दी बख्शिश दोहराइए। कोई भी रसना वाजी ना रहे, सब माई भाई फतेह दे सिमर नाल जुड़ो और उस सिमरन दे मिले बल विचों दासरियां नूं कुछ बोलन दा बल बश करो। अद विच साहिबां नूं सीस चुकाओ ते गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा
1: खालसा
0: वाहिगुरु जी की
1: फतेह।
0: सत संगत कैसी जानी है जिथे एको नाम वखाणी है,
1: वखाणी है
0: एको नाम हुक्म है। नानक सतगुरु दिया बजाए जियो, साहब कहिंदे सेई सुंदर सोहणे साध संग जिन बहणे। ओ मनुख बड़े सोहणे लगदे आ जेड़े संगत विच आके बहिंदे आ। जह सतगुर तह सत संगत बनाई, तुमरी ही किरपा ते भयो साध संग। महाराज तुहाडी वड्डी किरपा होई आ ते संगत दियां घड़ियां दा समा तां प्राप्त होया। तुमरी ही किरपा ते भयो साध संग, एहो काज तुम आप कियो। महाराज जी संगत च लिआउण वाला संगत च बिठाउण वाला कार्ज तुसी आप कीता जी। पापी मनुख नूं अपराधी मनुख नूं कोई भी अपने लागे नहीं जे बिठाउंदा। धन्नवाद करो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा जेड़े सानू अपराधियां नूं अपनी गोद विच लैके बैठे आ। साडे तो पहला अति सत्कार योग महापुरश बाबा सेवा सिंह जी आप जी नाल गुरमत विचारां सांझियां कर रहे सन। आओ जिन्ना क समा मेरे सतगुरु होर बख्श करदे आ, देवत्यां वांग समाधियां ला के बैठो और ये अरदास जरूर करियो कि महाराज जिथे तुहाडे बचन सानू ए सुन दा सुभाग समा प्राप्त होया, उथे आप जी दे बचन सानू किते कमाउण दी भी जाच आ जे। गावया सुनिया तिन का हर थाए पावै, जिन सतगुर की आग्या सत सत करमानी। गावया सुनिया उन्हां दा प्रवान होना जिन्हां गुरु के बचन सुन के ते उहदे उत्ते चलण दी कोशिश कीती। आप जी रात दे दीवाना विच साहिब गुरु कलगीधर पातशाह महाराज दा प्रसंग सरवण कर रहे सी कि भाई मनी सिंह दे नाल मतावां किस तरह दिल्ली नूं गईआं और किस तरह सतगुरु पातशाह दा विछोड़ा पिया। इधर कलगियां वाले पातशाह महाराज चमकौर दी जंग जित के माछी वाले दे कौतक करदे होए सतगुरु पातशाह मुक्तसर विच बहुत वड्डी दुश्मनां नूं हार दे के ते श्री दमदमा साहब दी धरती ते पहुंचे। इधर मतावां नूं भी भाई मनी सिंह जी लै के दिल्ली तों दमदमा साहब पहुंचे। भावें मतावां नूं पता लग चुका सी कि साडे पुत्र शहीद हो गए आ, पर मां दी ममता बड़ी गहरी हुंदी आ। जदों सतगुरु पातशाह महाराज दरबार विच पहुंचियां ते महाराज जी नूं बेनती कीती, महाराज दो साहिबजादे तुहाडे ऐस बन्ने खलोते हुंदे सी, दो ऐस बन्ने खलोते हुंदे सी, अज चौहां दे विचों एक भी नजर नहीं आउंदा। महाराज साडे पुत किथे आ? ते सतगुरु पातशाह ने फिर तुहाडे वल्ले उंगल करके क्या की सी के इन पुत्रन के सीस पे मैं वार दिए सुत चार, चार मुआ तो क्या हुआ जीव तलाख हजार। आ जेड़े बैठे मेरे जीते जजार, ए मेरे जोरावर ते फतेह सिंह। महाराज ने अपने पुत वार के सानू अपने पुत्रा दा मान दिता सी। अज गुरु गोबिंद सिंह ने साडे पुत्रा विचों अपने पुत्रा दे दर्शन करने होण ते तुहानू पोटियां ते गिन वाले परिवार मिलणगे जिन्हां दे घर सिखी दी जड़ लगी आ। नहीं ते हालात पंजाब दी धरती ते इहो जे हो गए आ, तुसी जिधर नू वेखोगे तुहानू कन्ना च मुरकियां वाले बड़े मिलणगे, तंबाकू नाल दंद खाधे चार चफेरे वेख लोगे, सिरां ते टोपियां वाले बेअंत वेखोगे, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਉਹ ਵਿਰਲੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈਆਂ। 10-10 ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗੀ ਸਿੱਖੀ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤੇ ਵਿਸਦੇ ਤਿਸ ਤੇ ਕੌਣ ਪਿਆਰਾ,
1: ਕੌਣ ਪਿਆਰਾ?
0: ਉਹ ਜੇ ਮਾਂ ਹੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਯਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਬਚਾਏਗਾ ਕੌਣ? ਜੇ ਵਾੜੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਫਸਲ ਦਾ ਰਾਖਾ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ? ਆਓ, ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਮਤਾਵਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਆ? ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸੁਣੀਏ ਲੈਣਾ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਵਿੱਚ।

0: धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, पूरे सतगुरु कोट ब्रह्मंड के ठाकुर स्वामी, दशा पाछाई दी जागदी जोत, धन धन गुरु रामदास साहिब महाराज, जिठे सभ्य थाओ नहीं तुध जिहा, जिन्हां दे सतगुरां दे अपने प्यारे कीर्तनीए, जिन्हां दी असीं की वड्याई कर सकते हाँ। साढ़े वड्डे भाग हैं कि असीं उन्हां दे बच्चे हाँ। साडा रिश्ता ऐसे महान गुरसिख नाल, ऐसे चढ़दी कला वाले आत्म प्रगासी जिन्हां दी रूह सी, उन्हां नूं बचपन तो देखिया, जिहड़े हर वेले प्रगाश दे विच, आत्म विकास दे विच, एक खेड़े दे विच रहिंदे सन। हर वेले वो खेड़ा ऐसा है कि जो हसी विचों नहीं आता। हसी अते रोना है दो चीज़ है, इस तो तीसरी चीज़ है उसनों कहिंदे हन धन गुरु अमरदास साहिब जी महाराज, आनंद आनंद सबको कहे, आनंद गुरु ते जाणिया। हसी अते रोना, इस तो तीसरी चीज़ है आनंद। आनंद जिसनों प्राप्त होंदा है उसका आत्म विकास होंदा है। आत्म विकास केवल परमेश्वर अते उसका नाम बख्शदा है। वो असी बचपन तो ही पिता जी दे चेहरे तो देखा है, बचपन तो ही ते देखते सन। असी भी हसते हाँ सब, पर अजे वो नहीं, वो एक खेड़ा सी। भावें लख तकलीफां कदी भी आ जाण, कुछ भी आ जावे, वो हमेशा खिड़े रहे, हमेशा खिड़े रहे। खिड़िया उही रहिंदा है जिसते हिरदे दे विच सतगुरां दे नाम दी उस पारस कला छू जावे। नाम दा पारस, नाम दे पारस दी गीटी जिहदे हिरदे विच वस जावे, वो फिर जिसनों भी मिलता है उसनों भी खुशहाल अते उसनों भी विकास बख्शदा जांदा है। ते वो साडे कोई वड्याई नहीं, दास ने कुछ बोलना नहीं सीगा क्योंकि दास अजे अपने आप नूं इतना लायक नहीं समझदा कि इस स्टेज दे उत्ते बैठ के कुछ बोलिया जावे। पर फिर भी आप सारे उन्हां दे अपने हो, सारयां दा तह दिलों धन्नवाद है। इस गुरुद्वारे की प्रबंधक कमेटी का, गुरद्वारा श्री फ्रीमोंट, गुरद्वारा साहेब फ्रीमोंट के सारे ही जितने ही पतवंते अते प्रबंधक सज्जन हैं, तिना का धन्यवाद। कल सैन होजे की भी स्टेज तो मैं उन्हों का धन्यवाद नहीं कर पाया, इतों कर देना हाँ। उन्होंने भी कमेटी का धन्यवाद, तो सात संगत जी आप जी का, आप जी गुरु स्वरूप हो, खालसा हो, परमेश्वर स्वरूप हो, आप जी के रब का वासा है, विच संगत हर प्रभ वसे जी। आप जी का वाह तह दिलों असी धन्यवाद शुकराना करते हाँ। छोटा लफ्ज़ है, आप जी का धन्यवाद है। जितने भी रागी संघा ने अज इत्थे भी, कल भी जिन्होंने हाजरियां भरिया, अज इत्थे भी सारे का धन्यवाद है। साढ़े तो पहला भाई बेताब सिंह करके गए, हुण भाई जगजीत सिंह जी आणगे, तिन्हां नूं जी आयां नूं, अते साढ़े बहुत सत्कारयोग मेरे वड्डे वीर जी, दोनों ही बहुत महान हस्तियां, धन गुरु रामदास महाराज के कीर्तनी भाई साहब भाई गुरमेल सिंह जी पिछे बैठे हैं। अभी छोटे होंदे सीगे उदों तो इन्हों देख रहे हैं, उदों तो ही इन्ने गुणी, जदों मैनू आवाजा भी नहीं वजाना आता सीगा, असं उदों तो देख रहे हैं पापा जी नाल। बहुत लंबे समय तो इन्होंने कीर्तन की सेवा निभाई है, तो बहुत निघ माणिया है। उत्थे ही वड्डे वीर जी जुझार वीर जी, जुझार सिंह जी बहुत महान तबला वादक, इन्हां वर्गे भी जद तबला हो जाते सीगे तो मैं कन्ना नाल सुनया है, जो कीर्तन करके बाहर आते सी तो वड्डे वड्डे तबला वादक, खैर उन्हां दा की नाम लेना, वो आके कहिंदे सन, कहिंदे सुनदे सां भाई साहब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दे शेर, कहिंदे वो अंदर गजदे पए ने, ते कहिंदे तबले वाला भी कोई बहुत महान कहिंदे हस्ती बैठे, देख के ताइए कौन तबला वजा रहा। उत्थे वीर जी जद गाते सन, तो ताया जी ने, सिंह साहब गए ने, जसविंदर सिंह जी ने इन्हों का नाम बिजली रखिया सीगा कि आप जी की आवाज़ बिजली वांगू जाती है, उपर वाजा टप जाते सन। असी बच्चे हाँ, किसी का साढ़े बोल उतने वड्डे नहीं कि किसी का धन्यवाद कर पाइए, बस सतगुरां का शुकराना है वार वार। सतगुर महाराज जी ने जे ऐसे महान महापुरख, महापुरख एक परमात्मा, महापुरख पुरखां का पुरख, महापुरख गुरु, महापुरख जो उस दे नाल नाम दे नाल जुड़ जावे वो भी आम पुरख नहीं रह जाता, वह भी महापुरख। तो जे ऐसे महापुरखों नाल साडा ਕੁਛ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਸ ਰੀਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਛ ਸੇਧਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਉਸਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਏਮ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਅੰਤਮ ਸਵਾਸ ਤੱਕ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੀਵਤ ਨਾਮ ਸਿਮਰਤ ਰਹੋ ਜਬ ਲਗ, ਕੀਰਤਨ ਨਾਮ ਸਿਮਰਤ ਰਹੋ ਜਬ ਲਗ ਘੱਟ ਸਾਸ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਦਾਨ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਨਾਮ ਸਿਮਰਤ ਰਹੋ ਜਬ ਲਗ ਘੱਟ ਸਾਸ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਦ ਵੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਨਾਮ ਸਿਮਰਤ ਰਹੋ ਜਬ ਲਗ ਘੱਟ ਸਾਸ। ਸਿਰਫ ਆਤਮ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਕੀਰਤਨ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬੱਚੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
1: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਅਤਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਬੰਬੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਪਿਆਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।